मैं तो उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा वे कजरा मेरे अंदर हूँ दिशुंशा शुंशा हर वेले हंसा कवा हूँ हाँ।